0: आवाज बिहीन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज
1: पाल सम्बत 1146 साउन शुक्ल पक्ष को 9।

0: σαρμάσω το σύρεπα, δικαιόν καμιά παρσάκα κανερδέσαν, σαν τόσο σαρτσίπα, δάνει μυροσταγωρή εικούσα. Πήρη βορή ονταμκήμα, ραχάτ μάτωμε όλα πατρά σερσάκ μακά σειράν, διάγγελη ρούλ παπάτα λεχνουμ χακού καμπάρς χαπή εικούσα, τα μπάνγκα ο παλικά πάντς ουάκο, κότλ, μπάραμα, παγιρουγκάικο άκτιν μπίτις αγράπανι, ραχάτ σαμαγκρή πηρίτσα μαπουρέωνα σακή εικούσαϊνα, ουά πόγνες σαντακνή παγιρουγκά κάρεν τάου τάου μαντιγρή εκάλη, χαντένα λατά καμπάρα όνε ατιάβασε σαμαγκρή, μπις μπάτωμε ήταν και εγών παίρου πάση, μάνης λέει αουζάζω με τεγόρ να πάει κασάινεν, πήρα τζενάκου τζιάν, τζάνι καρή, ρολπάκο ταμπάν πάτς κοτάλ μπάραμα, γουάικο παίρου λέει δός παρουάρ μπιστά πιτ πάει κασάν. Εμάλι μας αντασέτε να μπήκαραν τρυπών να πρότισετ μάτρα σερσάκ μαγκόγκα μισήλη λεχνουμάκωσα. Εμάλι μα πάτης αντασέτε να μπήκαραν γαρνικαρίν άτανε κάτι κοπαϊκώσα. Δυσβέπει όπιαν μας αόν σωμάτιν λάχουναν σάτι χατζάρζαν άρπλη. Άθμι άμα κουνάγερι θέμα. Ράτου κολόμιλε χαστά ξέρε γόρι την ουχάκο γό. Με τρύπα να μάτς χάπι εκό καμπάρα φάνη ρεχαϊκόσα, με πειράς μάργα ζωτούλη θέλμα κοντή με σηκάντα, δούλιεν μαϊστόρον ότι γαρίδε σερσάκμα, με μαλκάτι ουράνε λιχνουμάκο γό, μάρι βάτα τάψετι ονανότινη γαρί κολάκος σε τάχα βάτα, άτ μητάρ σωμό όγλου παρκάλ ουτχάρα, σαραγμάνα ουναλάγι εκούλε γαρί εκούσα, μάινα την δεκίτα το πανινάκα τάπα βάκο βάρεμα, ανίστη βάρι λύσιν το πάλτσο μπάτη, ελέχνου μάικο χάμπαρ σάπι εκούσα. Κέντρακο καραμπαϊκά μπίτς ράπρπα μπάγματι πρόδες σαρκάρμα σερσάκμα χάμπαρ σάπι εκούσα μπάγματι πρόδες σαρκάρμα ράπρπα κατίντζα να μαντριβάνε πασί πάτι πίτρα μπιμπάτ σαρκή εκούσα. Εμάλι κακήραν τα πάμε γαρλάι μου και μαντρή μας αμάρθαν γαρή καρά περπάσαν σε διαδάλκα ανέδα ουτάπ τα πάλα τα αρπάρι κούλη γαρή εκούσα. Από τάς αρβάμα ίνταν τύπο σερσάκ μαντήλη πόρε λελεχνου βάικο χαμπαρπανή σάπι εκούσα ίνταν απορτήλα σε άσβανάωνα. Νεπάλ άλλη γαμλέτσι τόν κο λότ άρμα καρυμ δός άρμα ροπονιά το λαγάνιμα αδόνικ ίνταν τύπο νερμάν σουρουγάρε κόλλεξα. Αρτικά ροβάρδα ενίκμα πόρτζικα πατσίσα ετά όρτα πίδεϊ πάτσισα άρμα πάιτζι πριαούνι. Σερσάκ μας σέρσοτε τα κάλλη, λεχνουμάικο καβαρσάπι εκούσα, τζονούγγε πόλ μπάνε πάση, μπάγε πάτσι του ίνμα τζάζερκο ντουλ πάκο γιάτρα, σερσάκ μα χέμαντε.
1: Έσο, μπορείς κάλμα πάνη, ποιος να σώζιλο ούνε κισιμκο χώρος, ανή σώσαλε τζον πανάιντσα. शौचालय में सकभर चाहे कम चिप्लिने होस् त्यहाँ बसिसकेपछि उठ्नला सजिलो होस् भनेर त्यो साइडमा त्यो किसिमको स्ट्यान्डहरू राखेको त्यसपछि पकाउने चुलोहरू पनि तलमाथि गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ सकेसम्म जुन बसिरहेको एउटा फ्ल्याट छ त्यसै माने त्यो सबै कुराहरू होस् यो पाटोहरूलाई यसमा चाहिँ समेटिएको हुन्छ
2: घर बनाउँदाखेरि छोराको लागि बनाइन्छ बुहारीको लागि छोरीको लागि सबैको लागि बनाइन्छ तर आफ्नै लागि बुढोलीमा बस्ने कोठासम्म हुँदैन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो कि यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो छ यस्तो?
1: पछिल्लो समयसम्मको लागि हामीले सोच्ने गरेका छैनौ, हामीले वर्तमानलाई सोचेर बनाउने गरेका छौ। पछिल्लो समयमा अलिकत यो होम मोडिफिकेशन यो कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ, कसरी आफ्नो घरलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर त्यो उमेर अनुसारको त्यसलाई सजिलो बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। मैले मेरो वृद्धावस्थालाई सोचेर अहिलेदेखि मेरो घर त्यस्तो बनाउने भनेर चाहिँ
2: हामी बुढो हुन्छु भने कल्पना नै हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ कति बेला।
1: होइन, कहिले काहीँ कल्पना नगर्नु र आफूलाई सकेसम्म म चाहिँ बुढो भएको छैन भन्ने फिलिङ गर्नु फेरि सकारात्मक कुरा हो, त्यो चाहिँ सकारात्मक हो, त्यसले सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ। मैले कहिले काहीँ एमफिल पीएचडी वालाहरूलाई विद्यार्थी भनौँ कि त्यो सहकर्मी भनौँ ती साथीहरूलाई पढाउने क्रममा के भन्छु भन्दा, तपाईँ आफू म चाहिँ बुढो हुन्न है भन्ने सोच राख्नुहोस् है, सकेसम्म आफूलाई जवान देखाउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसको लागि आफ्नो शरीर पनि त्यही अनुसार मेन्टेन गर्नुहोस्, लवाई पनि त्यही अनुसार मेन्टेन गर्नुहोस् भन्छु कि, त्यो पाटो चाहिँ राख्नु त राम्रो हो, आफूलाई सचेत बनाउँछ नि त। जब तपाईँ मेन्टली बुढेसकालको लागि म आफै तयारी पनि हुनुपर्छ भनेर सचेत अवस्थाले बढ्नुभयो भने अचानक हुने समस्याबाट हुने पीड़ा र तयारी सहित हुने उसमा चाहिँ धेरै कम गर्न चाहिँ सकिन्छ।
2: नेपालमा कस्तो छ ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था यहाँको अनुसन्धान अनुसार?
1: अब यो त 3 करोड जति जनसंख्या छ, त्यसको लगभग 10% जति ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ भनेको लगभग 30 लाख ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, र नि जन्मिने बच्चा को संख्या घट्दै जाँदा माथिल्लो उमेरसम्मको भनेको 60 वर्ष भन्दा माथिको त्यो बढ्ने अनुपात चाहिँ तीव्र छ।
3: यो कुराकानी सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा संचालित सीआईएन को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
4: ग्यास सिलिण्डर सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि अनलाइन ट्यापिङ शुरू गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। विदेशी सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेट र सरकारी कोष प्रणालीबाट परिचालन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको सुझाव। 4G का 2500 टावर थपिँदै 5 शहरमा 5G पुर्याइने।
3: एमालेमा सदस्यता नवीकरण 53% मात्रै। संघको कार्यवाहीका बीच राप्रपा बागमती प्रदेश सरकारमा गभर्नरको कार्यकाल घटाउने निर्णयमा पूर्व गभर्नरहरूको असन्तोष।
4: अनावरणको तयारीमा जेएनजी आन्दोलनका 42 सदस्य सहितको शालिक। अण्डाको मूल्य फेरि बढ़्यो। वैदेशिक रोजगारीको भयावह चित्र। अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर नेपाली विदेशी।
3: संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको वर्तमान संरचना सुधार गर्न भारतको आग्रह। अमेरिकी राष्ट्रपतिको धम्कीपछि विश्व बजारमा तेलको भाव बढ़्यो। हर्मुजबाट झण्डै 3 गुणाले तेल आयात।
4: र पोखरामा 5औं संस्करणको दौड़ प्रतियोगिता हुने। 20औं एसियन गेम्सका लागि नेपाली खेलाड़ीको तयारी तीव्र। इंग्लिश प्रिमियर लीग आजबाट।
3: साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले फितकौली .com मा छापिएको राजेश मानन्धरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ, अहिलेका नेता र विभिन्न राजनैतिक दलहरूले विगत 30-35 वर्षको उपलब्धि र इतिहासको अपमान भएको, आफूहरूलाई व्यवस्था गरिएको भनेर विभिन्न सभा समारोहमा भाषण गर्दै आएका छन्। एउटा खुल्ला क्षेत्र छ, दुईजना व्यक्ति वार पार समानान्तर भएर अगाडि बढ़दै गर्दा ती दुई बीच केही संवाद चलिराखेको जस्तो देखिन्छ, र त्यसै क्रममा एकजना लामो नाग भएका जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। उनले केही भन्दैछन् नजिकै रहेका अर्को व्यक्तितर्फ हेरेर। बीचमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, 35 वर्षको उपलब्धि र इतिहासको अपमान भयो रे, त्यसो भए सम्मान गर्न लायक चाहिँ के छ त?
4: हवस्त, प्राविधिक साथी रवि दितालाई धन्यवाद। अहिलेलाई लीलप्रकाश चन्द्र सन्तोष गन्धर्व विदा भयो। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।

आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9857301।

0: आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084/20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म। संपर्क नंबर 9856301।
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: निकट माते दी बहिनी, विकट माते दी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी 95 थोपलो

0: आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह चार बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98576301
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।